2 जून दा अज दा दिन 1984 1 जून नूं गोलीबारी शुरू हो जांदी है। ओही जुल्म दा वरतारा 1 जून दी गोलीबारी विच भाई महंगा सिंह बब्बर ते साथी सिंघां दी शहादत तों बाद 2 जून नूं गुरु नगरी श्री अमृतसर साहिब सवेर तों ही स्थानिक प्रशासन वल्लों करफ्यू लगाता। उस दिन कोई बाहर नहीं सी, सब कमाकारां वाले अपने घरां विच सन, कोई बिजनेस नहीं ओपन सी, कोई दुकाना नहीं ओपन सी, कोई रेहड़ियां बाहर नहीं लगियां सन, चारे पासे चुप दा वरतारा सी। सिर्फ गोलियां दी ताड़ ताड़ ठा ठा पूरे अमृतसर नूं अपने कलावे दे विच लै रही सी। श्रोमणी कमेटी दे प्रधान जथेदार गुरबचन सिंह टौड़ा जी नूं भी अपने दफ्तर जाण तों रोकण दी कोशिश कीती गई, पर एक पासे तत्काल लीन प्रधानमंत्री साहब इंदिरा गांधी जी ने रेडियो दे उपर दूरदर्शन दे राहीं देशवासियों नूं एक संदेश भी दिता कि असी गलबात नाल अकालियां दे नाल गलबात करके मसला हल कर लवांगे। सिर्फ दिखावा सी, होया कुछ नहीं। दूजे पासे पहला ही पंजाब दे विच फौज भेज दिती गई सी, बहुत सारी फौज पंजाब दे वक् वक् हिस्सों दे विच ऑलरेडी तैनात कर दिती सी, एक साजिश दे तहत, एक प्लानिंग दे तहत। एक कोई अचनचेत होने वाला वरतारा नहीं सी, कुछ वड्डा होण जा रहा सी, कुछ वड्डे होण दे आसार सन। पंजाब दे बुद्धिजीवां नूं भणक पै गई सी, उह भिणक किते ना किते राजनीतिक भी सी ते धार्मिक भी सी। पर दूजे पासे इस ऐलान तों पहलां पंजाब नूं फौज दे जदों भी हवाले कीता गया तां फौज दीआं डिवीजनां पिंडां विच वी तैनात कर दित्तियां गईआं। पिंडां दे लोकां नूं वी पिंडां दे विच ही कैद कर दित्ता गया कि पिंडां तों वी लोक निकल ना सकण, तां कि जिहड़ी घटना होण जा रही आ उस नूं वेख के सुण के किते पिंडां दे लोक भड़क ना जाण। इसे करके CRP दे नाल फौज ला के पिंडां दे लोकां नूं वी पिंडां दे विच आस पास दे पिंडां नूं कैद कर दित्ता गया, वड्डे रोड जाम कर दित्ते गए, हर आउण जाने उपर निगरानी रखी जाण लगी, तलाशियां होण लगियां, पग्गां लैण लगियां। ऐलान कर दित्ता गया कि सूबे दीआं सरहदां सील कर दित्तियां जाण, सारियां सरहदां, अमृतसर नूं जाण वाले सारे रस्ते बंद कर दित्ते गए। ते 2 जून 1984 तक रेलवे, डाक, दूर संचार ते आवाजाई समेत सारा सिविल प्रशासन फौज ने अपने कब्जे विच लै लिया सी। इह सी 2 जून की कहानी। कल नूं 3 जून नूं की होया, की वरतारा, किस तरह गोलीबारी होई, किस तरह कल नूं 3 जून ते भी गलबात करांगे। 1984 ना भुलण योग, ना सहण योग ते ना माफ करन योग। 905-673-3337 रेडियो प्रोग्राम उड़ान दे नाल तुसीं जुड़े हुए, मैं थोड़ा अपना मेज़बान। ये उन्हां बे गुनाह शरदालुआं नूं समर्पित, बहुत छोटे छोटे बच्चियां नूं समर्पित ये 6 दिन का वाका थोड़े नाल सांझा करांगे। तो जुड़ियो, असीस दिओ। 905-673-3337 905-673-3337।

क्या बात है यार। अच्छा यार मैनू खुद बड़ा मजा आ रहा देख के तुसी ये गाना ना कल आप सुनांगे रेडियो प्रोग्राम उड़ान च हुण समा इजाजत नहीं दे रहा। सो बहुत अमेजिंग यार क्या बात है 905-6-77-33-37 तुसी जे अपना बिजनेस रेडियो प्रोग्राम उड़ान दे उपर एडवरटाइज करना चाहुंदे हो तां भाई तुसी सानू कॉल कर लिओ 437-870-0001 437-870-0001 बहुत ही वाजिब प्राइस दे विच तुहाडे बिजनेस नूं रल मिल के अगे वधांगे ते गलबात करांगे फिर तुहाडी आवाज़ साडे लखां सुनने वाले स्रोतों तक पहुँचावे। सो भुल्यो ना मुस्कराना हासे आबाद रखियो रोशन दा लै सवेरा फिर मिलेंगे याद रखियो ते नाल दियां तुसीं लवाना वैलनेस स्पा नूं जरूर याद रखना कल नूं गल्लां बातां बहुत करांगे लवाना वैलनेस स्पा बारे। सो लव यू ऑल जिंदगी जिंदाबाद शुभ रात्रि मिलते हैं कल नूं इसे टाइम इसे वेले खूबसूरत गल्लां बातां करन रेडियो प्रोग्राम उड़ान लैके रेडियो उड़ान इंस्टाग्राम आर जे प्रभ संधू वाले पेज नूं जरूर फॉलो करो उत्थे बहुत सारियां गल्लां बातां करांगे। सो लव यू ऑल गुड नाइट जिंदगी जिंदाबाद।

1630.ca. स्टूडियो दे विच लाइव कॉल करन दे लई फोन नंबर है 905-673-3337 905-673-3337 स्टूडियो दे विच लाइव कॉल करन दे लई फोन नंबर है 905-673-3337 905-673-3337

0: 80 ਪੌਰਬ੍ਰਹਮ ਰੋਡ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 1 905-799-8877 ਸੋਫਾ ਸਟੂਡੀਓ .ca। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।
1: ट्रक एक्सीडेंट ते रब ने हाथ दे के बचा लिया
2: ते कार दे खर्चिया नु हरजीत जंजुआ दी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ने संभालिया। अपने भविष्य नु सुरक्षित करन ते प्रेजेंट दे पीस ऑफ माइंड ली आज ही संपर्क करो हरजीत सिंह जंजुआ।
1: हर तरह दी वधिया इंश्योरेंस पॉलिसी ले याद रखो इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट हरजीत जंजुआ दा नाम। लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी, क्रिटिकल इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस, विजिटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, किड्स प्लान, RRSP, RESP, TFSA। कॉल करो
3: 6475294-6485-5294। जिथे हर तरह दी इंडियन ग्रोसरी, दाला, मसाले, पिकल्स, चौल, चाह पत्ती, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स,
4: डेयरी प्रोडक्ट्स, स्नैक्स, फ्रेश चिकन, बीफ, गोट मीट, सब कुछ मिलूगा। इन्हां दे रेस्टोरेंट विच तुसी परांठे, चना भटूरा, वेज थाली, वेज बिरयानी, बटर चिकन विद नान दा स्वाद लो।
3: एक बार आओगे फिर बार बार।

0: IPL चल रहा है only on Karo Stream. Watch successful IPL season only on Karo Stream. www.karostream.com or call 905-204-1313.
1: A to Z किचन कैबिनेट भाई वाह क्या किचन कैबिनेट तैयार करते हैं लक्की भाजी दी बनिया किचन कैबिनेट देख के गुआंढ भी बहाने नाल तुहाडे घर आउंदे हन शीशे नाल भरिया किचन कैबिनेट वास्ते डिजाइनर किचन कैबिनेट वास्ते A to Z किचन कैबिनेट 416-720-7073 905-720-7073 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

What a song, man! I love it. ये गीत है ना, प्यारा गीत है ना, ये गीत सुनने वाले भी प्यारे है, ते जड़े सुन रहे हो तो है ही है प्यारे, ते लाउन वाला उस तो भी प्यारा सिंगर जी दे शो तो ही सुन रहे हैं पंजाबी विरसा।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
2: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नो मिलो। इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानु सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो कर दी है ते कवरेज इंक्रीज कर दी है। वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-6500 416-817-6500।
3: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
4: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
3: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
5: विमला विलेज ला विलेज पढ़ दे पीओ च जंट पढ़ दा। विमला विलेज ला विलेज, विमला विलेज ला विलेज पढ़ दे। सत श्री अकाल जी, मैं हां तुहाडी अपनी शिप्रा गोयल ते तुसी सारे सुन रहे हो वतनों दूर रेडियो सुखी निजर जी दे नाल।

0: IPL chal raha hai only on Karo Stream. Watch successful IPL season only on Karo Stream. www.karostream.com or call 905-204-1313.
1: देखो जी करता है अपना नंबर वन पर मेरा दिल करता है अपना कर सारे तो सोना हो भी
2: बस इन गल हो कर

0: 416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551- कैनेडा दे स्टडी वीजा एक्सप्रेस एंट्री कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री स्पाउसल फाइल पेरेंट्स पीआर सुपर वीजा नैनी वर्क परमिट फार्मर इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सॉल्यूशन लैन लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो
1: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन हुणे ही कॉल करो 456-6161
2: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
3: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
4: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381 ते
2: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-456-3381 416-457-3381
5: ते डरावरी सूट कर दियां जट्टां नु
6: अज जणे खणे दे वासी गल नहीं है